0: करेगी।
1: सवा इसके नाम से मेरा नहीं काम ये, आग का न पानी का, रोग ये जवानी का, जिसे लग जाता है उसे लग जाता है।

हरि ओम शंकर काटाल अगेन कंकर कहानी है झूठ का फसाना है कैसा ये जमाना है बिच्छू का बहाना

0: शादी दिखाओगे या कव्वाली शुरू करोगे?
1: अरे कव्वाली सुनाता हूँ, सुनो छोकरे लोग, आज ऐसा जम के बजाओ कि मेरी जोरू का तंबू हदर जाए।
0: और बहनों ऐसा गाओ कि मेरे मियाँ का झोपड़ा उड़ जाए।
1: बजाओ रे।

तुझको लाखों हलालों की हराम कमाई दिया और तू मेरे को ताना दे रही, दो बादाम खिला के बोल रही, अरे बादाम नो लाते कते संदक।

0: अजमत को अपने आज मैं रोती बैठ को।
1: अरे पगली, अगर मैं तेरे को हंसाया तो फैमिली प्लानिंग वाले रोएंगे ना। तू जानती है तू कौन है?
0: क्या हूँ?
1: चिकनी मट्टी।

साहब का ये कहना है कि वो मस्जिद में थी और साक्षी की गवाही है कि मेहखाने में थी, तो सवाल ये पैदा होता है

क्या बात नहीं है डर की, ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर, लाइन क्लियर बाय।

0: नाम का फकीर और ये ठाट बाट ये झंडे इससे तो हम अकेले में निपटेंगे।
1: ट्रांसफर ट्रांसफर IMPS ट्रांसफर रांगा नाहीत वाट पाहणं ही नाही। विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड नाशिक IMPS सेवा क्षणात पैसे सुरक्षित व्यवहार विश्वास म्हणजे विश्वास बँक।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो एक बात, लेकिन एक बात

दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में सभी प्यारे श्रोताओं को प्रांजलि का प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में सुनेंगे चेहरे पर आधारित कुछ हिंदी गीत। चेहरा हर इंसान की पहली और मुख्य पहचान होता है। ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, इसलिए तो दोस्तों चेहरे को इतना महत्व दिया गया है। चेहरे के जरिए लोग खुशी, गुस्सा, उदासी जैसी भावनाएं जाहिर करते हैं। चेहरे की संरचना और कार्य केवल संवेदनाओं से संबंधित नहीं है, यह तो सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है।

दिल पुकार है इस प्रोग्राम में। अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म कभी कभी से, गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत में पिरोया था खयाम ने। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वास 90.8, मैं हूं प्रांजलि आपके साथ और आज के प्रोग्राम में सुनेंगे कुछ चेहरे पर आधारित गीत। भगवान ने न जाने क्या जादू किया है पर एक चेहरा दूसरे जैसा नहीं बनाया। जितने इंसान उतने चेहरे, कुछ गोरे कुछ काले, कुछ गोल कुछ टेढ़े मेढ़े और न जाने क्या क्या, और कुछ हसीन चेहरे जो अपनी ओर खींच लेते हैं दुनिया को।

0: तुमने जवाब नहीं दिया।
1: यकीन नहीं आया
0: रेशमा, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। जिंदगी में इतनी कमी का एहसास कभी नहीं हुआ। हाँ कह दो रेशमा, हाँ कह दो।

दिल पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म धर्मात्मा से, गाया था किशोर कुमार ने, लिखा था इंदिवर ने और संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्तों चेहरे के बारे में बातें हो रही है आज के दिल ने पुकारा में, आपने ट्यून किया है 90.8। चेहरे हसीन तो होते हैं पर दोस्तों बदसूरत किसे कहा जाए। हर कोई परी की तमन्ना रखता है लेकिन हर किसी को तो परी नहीं मिलती। लेकिन अपना हम सफर जैसा भी है वो हसीन है, यही मानकर चलती है ये दुनिया और चलना भी चाहिए, क्योंकि सूरत के पीछे जो सीरत है वही काम करती है। वरना बीवी या शौहर दिखने में बड़े प्यारे क्यों ना हो, बर्ताव में अगर कुछ प्यार नहीं तो क्या काम के।

दिल पुकार में अभी आपने इज्जत फिल्म से गीत सुना जो गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा था साहिर लुधियानवी ने। दोस्तों आप सुन रहे हैं दिल ने पुकारा, आपने ट्यून किया है रेडियो विश्वास 90.8। हर औरत चाहती है परियों सा चेहरा, लेकिन जैसा चेहरा मिले अपना जैसा भी चेहरा है वो अपने हाथ में नहीं है। जो चेहरा भगवान देता है बस वो अपना चेहरा है, उसे अपने कर्मों से सुंदर बनाना हमारे हाथ में है। अच्छे कर्म करने वाला खूबसूरत लगने लगता है, बुरे कर्मों वाली परिया भी बदसूरत होती है।

पुकारा में अभी अपनी पारस मणि फिल्म से गीत सुना, गाया था लता मंगेशकर और कमल बारोट ने, लिखा था असद भोपाली ने और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जो अपना होता है वह सिर्फ सुंदर है इसलिए अपना नहीं होता, जो अपने दुख दर्द पहचाने, संकट में मदद करे वही अपना बन सकता है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि दुनिया की नजर में अच्छे कर्मों से खूबसूरत बनना ही सबसे बड़ी बात है, भले ही भगवान ने कैसी भी सूरत दी हो।

0: दिल ने पुकारा आप सुन रहे हैं। दोस्तों अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म वक्त से, गाया था आशा भोंसले ने, लिखा था साहिल लुधियानवी ने और संगीत से सजाया था रवि ने। ऐसा कहता है कि मन में जो भी बातें होती है, जो भी विचार होते हैं, चेहरे पर तुरंत दिखाई देते हैं। मन साफ सुथरा रखने से ही चेहरे पर हंसी खुशी खिलती है। मन की आंखें होती है दोस्तों जो दुनिया की तरफ बड़े ममता से देखती है, करुणा से देखती है। इन आंखों को सिर्फ प्रेमिका ही नहीं, हर किसी का चेहरा ममता भरा लगता है दोस्तों। तो आज इस प्रोग्राम में हमने चेहरे पर आधारित कुछ नगमे सुने। जितने व्यक्ति उतने चेहरे हैं, इन चेहरों के पीछे छुपा हुआ हर इंसान भगवान की बनाई हुई मूर्त है और इस इंसान के चेहरे पर गीतों के माध्यम से मुस्कुराहट खिलाना, यही तो रेडियो विश्वास का काम है। तो चलिए दोस्तों, हंसते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए रेडियो विश्वास 90.8। फिर मिलेंगे अगले मंगलवार, तब तक नमस्कार।
1: यार दीदी, यावेळेस मला तुझ्या वहिनीला खूप स्पेशल गिफ्ट द्यायचंय।
2: अरे मग दे ना, एवढा का विचार करतोयस?
1: पण काय द्यायचं तेच समजत नाहीये ना।
2: अरे रेडिओ विश्वास आहे ना,
1: म्हणजे
2: आता बर्थडे असो किंवा अनिव्हर्सरी, आपल्या प्रियजनांना आपण रेडिओ विश्वास वरन शुभेच्छा देऊ शकतो।
1: ते कसं काय?
2: फक्त 500 रुपयांमध्ये आपण या शुभेच्छा देऊ शकतो। तर लगेचच कॉल कर 8380016512 किंवा 8380016500 या नंबरवर।
1: हो लगेचच कॉल करतो।
3: कार्यक्रमात आता ऐकणार आहोत आशा भोसले यांच्या आवाजात विजय आनंद यांचं गीत छुपा रुस्तम या चित्रपटामधलं, आणि या गीताला संगीत दिलं आहे सचिन देव बर्मन यांनी।

0: मेरी सूरत के तलबगार मगर क्या जाने
1: कि मेरा मारा हुआ दुनिया में ना पानी मांगे।
2: वाह

0: अरे मामा, तू यहाँ अय्याशी कर रहा है और ऊपर से तेरा भांजा आ रहा है।
1: हैं? भांजा आ रहा है? अब क्या होगा? देवियो, भागो यहाँ से।
2: मगर मामा, भागने के लिए कोई रास्ता भी तो नहीं।

0: जवाब। अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
1: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
2: अरे तेरी की भूला।
0: कहना
3: क्या